अग्ने अतिर्वर्मनसा गृणानो अस्माकं भोज्य विधातनो नाम कृतनाजिदगुं सहमानमुग्नमग्निगुं भवेम परमा सदस्तात् सरः पुरुष